0: कैसे खड़ी हूँ?
1: घंटा मिलने जुलने का वादा सब सिग्नल पे करते हैं, अपनी लापरवाही से कुछ लोग यहाँ मरते हैं।

0: पैसे दे। सूट लगा के एक रुपए का कॉइन दिखा था, पांच रुपए दे जट में चल लुखा।
1: कोई कहता है हाय हाय, कोई कहता